धन गुरु नानक पातशाह जगत जलंदे नूं ठारन जो आए सी। वेख्या संसार ते बड़े जुलम कह रहे हन, जे सकता सकते को मारे ता मन रोश न होई, ता कोई रोश नहीं, पर गरीब जनता नूं लताड़िया जा रहा सी। लहू दियां नदियां बहाइयां जा रहियां सन। सैदपुर दे पठान जो हिंदुस्तान ते काबज सन, जनता नूं लताड़ रहे सी। बड़ी दुखी सी जनता, बड़े हंकारी हो गए सन। निरंकार दी लीला है, पाप की जंज लै काबलों दाया। क्योंकि निरंकार दा खेल है, ए बाबर ने भी राज भाग करने सी आके, ते काट इस भी ना कीती, हिंदुस्तान ते आके बड़े जुलम ढाए। जिथे सैदपुर दे पठाना नू सजा मिली, उथे फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह बाणी विच दस रहे हन, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। मुगला ने आके चढ़ाई कीती, ते फिर जोर दे नाल आके दुनिया कोलो धन दौलत सब कुछ खो लिया। गरीबां दे लहू बहाए, जिथे शहूकारां नूं लुटिया, उथे संतां साधुआं फकीरां नूं भी पकड़ के अपने कैदी बना लिया। ते जगत जलंधे नूं ठारन लई आए निरंकार दा रूप, कोट ब्रह्मंडां दे मालक सुख जूं देना सी संसार नूं। आप भी इस टोले विच हो विचरे, जो कुछ लुटिया सी ए माल धन चुकन लई लोड़ सी उन्हां नूं, ते सारिया दे सिरां ते पंडा रख दित्तियां ते अगे ला लिया। धन गुरु नानक पातशाह जी दे सिर ते भी पंड रख दित्ती, पर इन्हां ने की तकिया कि धन गुरु नानक पातशाह एक हाथ विच माला है, दूजे हाथ विच काशा है, ते पंड चार उंगलां सिर तो उपर चल रही है। सिपाहियां ने जाके अपने सरदार नूं दस्या, भई एक फकीर ऐसा अजमत वाला है, जिसने हाथ भी नहीं रखिया होया, ते पंड नाल नाल चली आ रही है सिर ते। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। इन्हां ने जिथे लुट दा माल इकट्ठा कीता होया सी, नाल ही एक कैदखाना भी बनाया होया सी, जिथे चक्कियां रखियां होईयां सन फौजां दे आटा पीन लई। सारिया नूं कणकां दित्तियां गईयां, भई चक्कियां चलाओ भाई ते आटा पीवो। धन गुरु नानक पातशाह जी नूं भी दित्ती गई, ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जिन्हां ने अरदास कीती सी, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरे तिते ले हो बार। हे निरंकार, तेरी सृष्टि इतना दुख भोग रही है, इतनी कुरला रही है, कृपा कर इन्हां नूं सुख सुखी कर। धन गुरु नानक पातशाह मरदाने नूं कहन लगे, मरदानिया तैनू चक्की चलाउण दी लोड़ नहीं, तू परमेश्वर दा सिमरन कर। रबाब वजा बाणी आई है, ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने ए शब्द उचारण कीता के एती मार पई कुरलाने, तै की दर्द ना आया। हे निरंकार, कृपा कर, प्रजा ते बादशाह दा की मेल हुंदा है, प्रजा दे गरीब बंदियां दा ते बादशाह दा मेल।
इस तरह है जिवें एक शेर गवां दे वग नूं अगे ला लवे पर उसका रथवाई उदी रखवाली करदा है। तू कृपा कर इस जगत जलंदे नूं सुखी कर। एक अरदास कीती जां पादशाह बाबर नूं पता लग्या कि एक ऐसा अनोखा फकीर आया है कैदी बन के जिदी चक्की आपे चल रही है, आप ओ गले विच दाने भी नहीं पा रहा, आपे ही दाने पै रहे हैं ते आपे ही पीछे जा रहे हैं। ता आके जदों दर्शन कीते, दर्शन कर दिया आत्मा शुद्ध हो गई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। बाबर ने कहा, हे बंदे खुदा दे तू कौन है? धन गुरु नानक पातशाह कहन लगा, मैं कोई होर नहीं, मैं भी उसका एक मामूली बंदा हां, पर तू बंदियां वाले काम नहीं कर रहा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे बाबर नूं, भाई तू भाई खुदा दा बंदा है? आखे जी मैं खुदा दा ही बंदा हां। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, जेड़े खुदा दे बंदे होंदे हन ओ खुदा दे बंदियां ते रहम करदे हन, जुलम नहीं ढांदे। जे किते बाबर खुदा दा बंदा होंदा तां फिर ए पशुआं वांगू दुनिया नूं मारदा ना, लिताड़दा ना, निरादर ना करदा। खुदा दे बंदे विच खुदाई होंदी है, खुदा संसार विच वस रहा है ते संसार खुदा विच वस रहा है। जे संसार नूं दुख देईए तां ओ दुख उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं पहुंचदा है। तू निर्दोष प्रजा नाल क्यों इहो जे जुल्म कर रहे हैं? हुण सिपाही हुक्म दी उडीक विच हन, भाई अज इसका छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि एडी वड्डी गल कर रहा फकीर। पर बाबर दा मन झुक गया जदों अपने अंदर दा शीशा वेख्या कि जिस वाहिगुरु ने, जिस अकाल पुरख ने एडे सुख दिते, एडियां वड्याईयां दित्तियां, ते मैं उसकी साजी हुई सृष्टि नूं सुख ना देवां, लताड़ां, ता ओ मैनू किवें परवान करेगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। सतगुरां दे एक सन तां कौड़े बचन, पर असल विच उदे जीवन लई एक रोशन मुनारा सन। चरना दे दिख पिया, खुदा वालिया मेरे कोलों भुल हो गई है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने उस वेले अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणा विच बेनती कीती, हे निरंकार कृपा कर इस जगत जलंदे नूं रख लै, इना जीवां नूं सुमत बख्श। ए पुन्ना करके बादशाह तां बन जांदे हन, पर तेरी कृपा नूं, तेरी होंद नूं ए भुल जांदे हन।

ते नहीं ते भाई फिर असी मोड़ लवांगे, उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। जदों बादशाह औरंगजेब ने जुलम दी अत कर दिती, शरमद वर्गे फकीरां दा कतलेआम, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शहीद करना ते होर अनेकां उगर पाप जदों कीते, ते फिर किथे है भाई अज? अज ओही बादशाह औरंगजेब दी कबर ते कोई दीवा जगाउण लई तैयार नहीं है। मुजावर बैठा हुंदा है, कोई 2 रुपए 4 रुपए देवे तां अंदर जाके दर्शन करा देंदा है, नहीं तां कहिंदा जदों मैं जांदा हां बादशाह औरंगजेब दी कबर ते मेरा अंदर जलन लग जांदा है, ते जो देश कौम लई आपां वार गए, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दा अस्थान अज वेखो शीश गंज साहब, हर वेले जुगो जुग अटल जोत जग रही है। जो एक वेरा भी दर्शन कर लैंदा है फिर घर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय दी मोर लग जांदी है। जिन्हां ने भाई सच दे रस्ते ते चले, जिन्हां ने सच कमाया दुनिया विच, तो जो भी महापुरख अवतार संसार ते आउंदे हन ओ दुनिया दा संसारी जीवां दा दर्द लैके आंदे हन। धन गुरु नानक पातशाह भी एक दर्द दा प्रगटावा कर रहे हन कि हे वाहिगुरु जगत जलंदा रख लै, अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरे तिते ले उबार। इतनी मार पई कुरला ने, इतनी मार होई

सब सब धरती हल चल भाई छाडे घरवार इं ऐसे दंत कलेश में खपियो संसारा तह बिन सतगुरु को नहीं पहले तनहारा गह ऐसे खड़

गोविंद गोविंद गोविंद संग नाम द्यो मलीना आठ दम कोछी परो होयो लखीना भूलना तन्ना त्याग के प्रीत चरण को बीरा नीच

0: साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारिया ओए कर कर सुनिया
1: कर कर किवें सुनिया गया हिरदे

महादेव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देवते, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रिसाए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे

पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया। संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूकै पवनिद पार परो, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यो कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रहन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती तब हूँ ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

तीन तिहारी तो ना पार पाई अता है कागज दीप सब करके कागज दीप सब करके अर्थात समुद्र की मस्त है हो।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलदी हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगां, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ा, हां मंगना चाहिए, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहिब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पेक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे है। हे परमात्मा जिन्हें मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है, पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी, संसार विच रिस्पेक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो कि निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं, इसलिए कहिंदे ने मान मंगया। फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगया, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उन्हूं सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहिबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे, परमात्मा दे धन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने घर की गेहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहीदी।

फिर मंगन जाइए। ऐसी मंग ना करिए जे दोबारा मंगनी पै जाए। कहते ने मंगना भी है तो एको बार मंग लो, क्योंकि परमात्मा को जो असी मंगना है वह मिल जाना है। तो मंगन लगे इस गल नू सोच लेना चाहिए कि मैं मंग की दे। हुण साहिब सानू एक गल समझांदे ने

मंगी है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही। मंगती का पहला गुण है जी, कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

जाको ठाकुर ऊंचा होई सोजन पर घर जात ना सोई। सो साहिब रया भरपूर सदा संग नाही प्रभु दूर। कवला चरण शरण है जाके कह जन का नाही घर ताके। सब कोई कहे जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता।

जिस परमात्मा ने तेनु बोलन दी जाच दिती ऐ रसना, फिर उस परमात्मा दा सिमरन तू क्यों नहीं कर दी? ए जड़ी साड़ी जुबान है, ए है ते

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना कि बहुता खान वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने, बहुते खान वाले ज्यादा मरते। ए रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राच रही। अन रस कहंदे ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ए भी खा लवां ओ भी खा लवां। किसे दी निंदिया चुगली कीती, किसे नू माड़ा कहा, किसे नू गालां कढ़ियां, माड़ी गल करके किसे दा घर बर्बाद कर दिता, ए कम ते तू कीता। पर ए रसना तू प्रभु दा सिमरन नहीं कीता। खाण दे वी रस हन, झूठ बोलना भी का रस है, निंदिया चुगली करनी भी का रस है, ए ते सारे ही रस।

अपने पल्ले नहीं पांदी पाव। है जुबान जदू तो नाम जपन लग पवेगी, मन करके फिर कदी अपनी जुबान तो किसे नु माड़ा नहीं बोल।

जे ए जवान नाम नहीं जपदी, उस वाहेगुरु दा सिमरन नहीं करदी, ते सतगुरु जी कहंदे ने इस रसना नू, इस जबान नू तिल तिल करके कटदे आ पाव, इस जबान दे मैं टुकड़े करदे आ, छोटे छोटे टुकड़े पाव दुख दे आ।

बच्चे दा पहला गुरु उस दी मां हुंदी। जे मां चंगी सिख्या देवे ते बच्चा नेक और चंगा बनेगा, पर जे मां ही अपनी जबान तो माड़ी सिख्या देवेगी ते फिर बच्चे दा जीवन ते बिगड़ेगा। कई बारी मावां ही बच्चियां दा जीवन बिगाड़दियां हन, झूठ बोलन दी आदत पा के, चोरी करन दी, चीज लुकाउण दी आदत पा के। हुण मां ने कहा कोई पाप नहीं कोई पुन नहीं, ते पुत्र ने मन लिया। आर्या समाज दे सत रिखी इन्हां ने तौणा नीवियां कीतियां ते बाल भी ਘੋੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ।

मरा मरा जपदिया जपदिया ऐसी मालक दी मेर होई बिरती लग गई मन जुड़ गया ए रसना जेड़ी मरा मरा कहती सी कृपा हुई मालक दी मरा मरा तू हुण राम राम हो गए समा बीते ओही आरिया समाई दे सत रिखी फिर उस पासे आए राम राम दी आवाज आ रही है इधर उधर देखिया बंदा कोई नजर नहीं आंदा एक मिट्टी दा ढेर है उत्ते कास उगे अपनी शक्ति नाल

सत्संग किस रसना दे नाल माड़ा बोलांगे जीवन माड़ा होवेगा। इस रसना दे नाल उस वाहेगुरु